भक्त पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाहे, पहरावा देखे उब जाहे। गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ है बावली, जैसे पादो खूब राज। तू तिससे खरी उतावली रहाओ। जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस। अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। पुत्र क्लत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो। साधु की जो लेहो ओट, तेरे मिठे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल। इस कर्म है सो तू ढूंढ खाहे, और किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ। चाकी चाटे चून खाहे, चाकी का चित्रा कहाँ ले जाहे। चीखे पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईट डेम। राग सारग चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद। अपने ठाकुर की हो चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के। हो मैं मार नबेरी रहाओ, पूरन भरम ज्योत परमेश्वर। प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे में अलिया, मन मेरा समझस शब्द बिचारे। मन मुखहीन होची मत चुन।

राज लोकानी पूर पवेख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण अधारा हर के नाम रति सोहागन नानक राम पतारा सारग महला पहला हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापे जहवा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाओ जब लग दर्शन परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मान्या जल रस कमल बिगासी उनव कर हर गरजे बरसे कोकिल मोर बैराग्य तरवर बिरख बेअंग बोयंगम कर पिर तन सोहागे कुचल कुरूप कुनार कुलखनी पिरका सहज न जान्या हरस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समान्या आय न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सोहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मान्या हर पाए प्राण अधारा रहाओ इन विद हर मिलिए वर का मन तन सोहाग प्यारी जात बर्ण कुल सहसा चुका गुरमत शब्द बीचारी जिस मन माने अभिमान ना ताको हिंसा लोभ विसारे सहज रवे वर का मन पिरकी गुरमुख रंग सवारे जारो ऐसी प्रीत कुटंब सनबंदी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा करम बिकारी अंतर रतन पदार्थ हित को दूर है न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम व अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहया परपूर रहाओ सतगुर संत मिले सांत पाइये किलविख दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफुल्लत पुरख निरंजन देख्या हजूर वड्डे भाग सत्संगत पाई हर हर नाम रहया परपूर अठसठ तीरथ मजन किया सत्संगत पग नाए तूर दुर्मत विकार मलीन मत होची हृदा कुसुद लागा मोहकूर बिन कर्मा क्यों संगत पाइये हमें व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जियो मागो सत्संगत पग तूर नानक संत मिले हर पाइये जन हर भेटिया राम हजूर सारग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी पवज

प्रभगम गोचर रव्याश्रभाई मंथन अलख पारी गुर कृपाल पय तब पाया हृदय अलख लखारी अंतर हर नाम सरब तरनी तर साकत को दूर पया अंकारी तृष्णा जलत न कभू बुझै जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुन गावे गुर किंचत कृपा तारी नानक जिनको नदर पई है तिनकी पैज सवारी सारग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मान्या तिनके काज सवारे रहाओ जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे अन दिन भक्त करह गुर आगे गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस नसना रस गाव है रस बीचारे गुर प्रसाद अमृत रस चीन्या ओय पाव है मोख द्वारे सात गुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम अधारे तिस आगे जियो देवो अपना हा सतगुर कै बलहारे मन मुख भ्रम दूजे पाए लागे अंतर ज्ञान गुबारे सतगुर दाता नजर न आवे न उरवार न पारे सर्वे घट घट रहा स्वामी सर्व कला कल तारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लेहो उबारे सारग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो खिच करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रहाओ गोविंद प्रीत लगी अति मीठी अवर विसर सब जाए अन दिन रह सपया मन मान्या ज्योति ज्योत मिलाए जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है शांत वसे मन आए गुर कृपाल पए तब पाया हर चरनी चितलाए मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए अंतर ज्योत प्रगति मन मान्या हर सहज समाद लगाए हृदय कपट नित कपट कमावे मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महागुबारा तुह कूटे दुख पाए अंतर लोभ

पत सुख पाए सारग महला चौथा। मेरा मन राम नाम मन मानी मेरे हिरे सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ दीन दयाल होवो जन ऊपर जन देवो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी।

पति हृदय हर हर पानी। पंच जना गुरवसत आने त्यो उनमन नाम लगानी। जन नानक हर कृपा तारी हर रामे नाम समानी। पंच जना

किछ करना सुकर रहया। सो दर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा के हा सो घर के हा, जित बह सर्व संभाले।

परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मन

रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर देखै की ताया पुणा, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहु साहपत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए। केवड़ वड्डा डीठा हुए, कीमत पाए न कहे आ जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया, तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिले नाही ठाकर हाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारण हारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख।

किल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाही, वड्डा न हुवै घाट न जाई।

जात खसम विसारह तेकम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया।

सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया सब निदानु दस अष्ट सिदानु, ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सुपुरख एकू अंकार सतगुर प्रसाद, सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा हर त्यावहु संतोह जी, सब दुख विस

सेवै तुदजी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुदजी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम

हर हर रूप सुमासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह।

किरे अनेक पढ़ है बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले।

सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वे कह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बात बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै कर।

काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

जाकू पीव न पावत बेदा, ताकौ कृपाहन अनुमानत। महामूढ़ कछु भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद है जेती। बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। केह बिद सजा प्रथम।

सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

देख न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ही।

मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे ता निउटियां दी उठ सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ दसो पातशाह की आत्मक जोत शब्द स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने महान कृपा रहमत कीती तरस कीता सतगुरु जी अमृत वेले तो खुले दर्शन दिदारे बख्शिश कीते समूह दाराइयां संगतां नूं दर्शन दे करके निहाल निहाल निहाल कीता सतगुरु जी आप जी का कोटान कोट धन्नवाद। गरीब नवाज इस वक्त आप जी की कृपा सदका संध्या दे दीवान सजाए गए सजे दरबार अंदर आप जी की अमृतमय बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ संगति रूप विच होए उपरंत सो दर रह राज साहिब बाणी दे पाठ होए। गरीब नवाज आप जी के पावन दरबार अंदर पवित्र गुरबाणी दे पाठ करदिया बेअंत बेअंत भुला हुई आप जी ने खिमा कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना बाणी पढ़न सुनन विचारण दी दात प्रदान करनी। सतगुरु जी अमृत वेले तो ही बेअंत संगतां ने आप जी के चरण कमलां दीआं हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां रसदा माया आप जी के चरणां विच भेटा कीती। सतगुरु जी समूह संगत दीआं हाजरियां दर ते प्रवान कर लैणियां भेटावां सफलियां करनियां सभनां नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके नवाजना काल कंटक दूर करने नाम बाणी भजन बाणी दा प्रकाश प्रताप सतगुरु जी बख्शिश करना रहमता करनिया घरां विच सख्त सुख वरतावनी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरिया बेअंत सेवावां भेजियां समूह संगत दियां हाजरियां सेवावां दर ते प्रवान करनिया गुरमत अनुसार सभनां नूं मन दियां मनोकामना मनोभावना पूरियां करनियां चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी अपने टहलीए सेवादार सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना काम क्रोध लोभ हंकार तो बचा करके भावना प्रीत अदब सहित अपने दर घर की सेवा दे योग बनाउना हर मैदान फते बख्शिश करनी चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी रहमत करो गरीब नवाज संगतां दी गरीब नवाजी करदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो संध्या दे दीवान प्रारंभ करन दी आप जी आग्या बख्शिश करो जी। सही प्यारे मेलना गरीब नवाज जिन्हां दे मिले आप जी दा नाम चेतावे सतगुरु जी आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जी अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

लिखा छूट अलिख है छूट है, हम निर्गुण ले हो उबारी। साधु बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी।

सब सिगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपेओ हट न पति जई। एक गाव है राग परिया राग न पीजई। एक नच नच पूरह ताल भगत न की जई। एक अन्न न खाहे मूरख तिना क्या की जई। तृष्णा हुई बहुत किवै न ती जई। कर्म वध है कै लो

हर भक्ति असनेहे गुरमुख की जई लाहा नाम संसार अमृत पी जई हर भक्ति असनेहे गुरमुख की जई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो शामां दे दीवान दी हाजरी श्रद्धा भावना अदब सहित भर रखे हो, प्यार नाल गुरदेव जी दी अमृत बाणी दा कीर्तन आप जिया ने सत्कारयोग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां दे जथे पासों सरवण कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी कथा दा, जो नितां प्रति धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीती गई मलार की वार दी आपां विचार कर रहे हां। अज 17वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 2 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। श्लोक तीसरे गुरुदेव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी अमृत रसना तो उचारण कीते गए हन अते पौड़ी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री मुख तो उचारण कीती गई है। श्लोकां दा सूक्ष्म जा भाव संखेप भाव ही है कि संसार जगत दे अंदर हर सुखमई आनंदमई पदार्थ उदो ही सुख आनंद प्रदान करता है जे उस आनंद नू उस सुख नू मानन दे लई जीव आत्मा प्यारे परमेश्वर दे संग दे नाल है। जा इउं कह ली वी जिस जीव आत्मा नू जिस जीओ नू उस कामन रूपी जीव नू परमात्मा रूपी कंत दा मिलाप है उदी याद है उस सावन दे महीने तो भाव है कि हर संसार दे सुख विच हर संसार दे आनंद विच आनंदमई रहेगी। जिस नू परमात्मा परमेश्वर दा प्यार नहीं मिलिया उदे आले दुआले भावे किन्नी भी हरियावल क्यों ना होवे सौण दियां कणियां पैंदियां होण भावे वह हर पासे पंछी चहचार रहे होण फुल्लां दा खेड़ा होवे पर गुरदेव जी कहिंदे ने वाहिगुरु दे नाम तो बिना जिहड़ी जीव आत्मा है वह सावण दे महीने विच भी विछोड़े विच सड़ जांदी है। सौण दे महीने विच अग लगनी गाफलता दी निशानी है ना। गुरदेव जी कहिंदे भी इस महीने भाव सब कुछ हुंदिया भी जे वाहिगुरु दा प्यार नहीं तां सब कुछ दुखदाई है। पौड़ी विच गुरदेव पिता महाराज ने कृपा कीती है कि फिर वह परमात्मा उनु पाया किवें जाए। बंदा बड़े हठ करदा है तप करदा है जप करदा है रागा नादां दा सहारा लैंदा है वह परिपूर्ण परमात्मा की इन्हां कर्मां राही पाया जा सकता है। तां गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने हर कर्म उत्ते स्याही फेर दित्ती कि वह परमात्मा ना हठ नाल ना जप नाल ना तप नाल ना राग नाल ना नचन कुदन दे नाल वह परिपूर्ण परमात्मा इन्हां किसे कर्मां द्वारा भी प्राप्त नहीं हुंदा जे कर मनुख जीव आत्मा दे अंदर उदे प्रति प्यार नहीं जागया उदे प्रति अंदर दर्द नहीं जागया पुकार नहीं जागी तां बिना प्यार तो बिना पुकार तो ये सारे कर्म जिहड़े ने बेअर्थ हो जाते ने। प्रेम का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। गुरु साहब जी पौड़ी विच कृपा करते हैं आपां गुरु कृपा सदका इन्हां शब्दां दी विचार करनी है। आओ विचार की आरंभता तो पहला रसना नू पवित्र करिए कोई रसना वांझी ना रहे प्यार सहित उच्चारण करो जी।

अष्टपदी जब अकार एहो काशना दृष्टेता पाप पूर्ण तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण जिहन ना जापत तब हरक सोग कह किसे व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार ना दूजा जब हुवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हार अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो पित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर गम पार अभिनाशी सुख आपन आसन तै जन मरण कहु कहा बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास काहु हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त कैस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर आगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेब कहा कूचीन जब अपन आप उर तहरै तो शगन अपशगन कहाँ बिचारै जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद नानके अपनी गत जानो आप जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागै चिंता जह अपन आप पतियारा तय कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा जह आपरच्यो प्रपंच अकार तेह गुण मैं कीनो बिसुथार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पह पहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहू पाक कापे तनी उनकी सुबाऊनहु बनी आपे कौतुक करै आनंद जोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिसथार जा तिस पावे तां सृष्ट उपाय अपने पाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तात का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे किस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दा सदा बलहार पूरण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जमे रहे ओ व्याप प्रतपालै जीअन बहु भांत जो जो रचे उस तिस तिहात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिस की आस न बिरथी जाए।

कर्ता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार

कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सुचिया थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए

मन जाने मन कोई, मन ने मार्ग ठाक न पाई, मन ने पास्यों पर घट जाई, मन ने माग न चले पंथ, मन ने धर्म से तीसन बंधु, ऐसा नाम निरंजन हुई, जी को मन जाने मन को।

संतोख था प्रख्या जिन सूत, जी को बुझै हुआ सचियार, तबलै ऊपर किता पार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया किता हुए।

लिखण लेख कुरान थित वार ना जोगी जान रुतमा हो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई।

नानक जी को आपो जाने अगे गया नसु है। पाताल ना पाताल लख आगा साया गासु, उड़क उड़क पाल थकी वेद कहनिक वात। सहस अठारह कहनक तिब्बा असलू एक तात, लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाशु। नानक वड्डा या की है आपे जाने आप, साला ही ती सुरत न पाईया। नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए, समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसर है, अंत न सिफती कह नयंत, अंत न करने दे नयंत। अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार,

कांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनों गा वह जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भाव है सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आदनील नादनात जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजै नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चिला वह लिखे या वह भाग आदेश से आदेश आद नील अनाद नाहत जुग जुग एक वेश

तारीख भंडारीख लाए दीवान, जे तिस भावै तिवै चलावै जिव वै फुरमान। ऊह वेखे ओना नदर न आवै बहुता इहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सुवार। कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी भव लख होहे लख होवै लख वीश। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एक राहे पत पवड़ियां चढ़िया हुए कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटाया ईरीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण दे न जोर। जोर न जीवन मरन है जोर, जोर न राजमाल मंसूर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टे संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी करम पवै निशान। कच पकाई उतै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड

किते मंडल देश किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते किते देवी वेश किते देव दान मुन किते किते रतन समुंद कितिया काणी कितिया बाणी किते पात नरेंद कितिया सुरती सेवक किते नानक अंत अनंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म कांड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत।

तिथे खंड मंडल वर पंड जी को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जीव जी हुक्म तिवे तिवकार विखे विगसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा।

अपेय हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, असूक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरीक है, कुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नाते, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ती विभूते, कलंकंग बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सत्रंग परणासी, अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अधो उर्ध अर्धंग गंगोग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी चंद जले।

त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाते सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है प्रतुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निश्चिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगात स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक अमितो अमित है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद्व प्रसाद जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंक प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंक प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदिशुल आलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जुमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार चंद्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग असन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल मंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारात कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकार कर कर प्रणाम चितचरण नाम अंचिज गात आज जना बातन चंज गातन रंज बातन टुट पंडार अंडट अपार आडीठ धर्म मत ठीठ कर मन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत है मृता मृत है मृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है मृता मृत है जपा कृत है मृता मृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्या चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम अगाह अटाह नाथे प्रमाथे अजो नियमो नि नरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे सुमस्तुल परनासे अगंजुल नामे।

कुमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जावत करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद रालम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपा न अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज कान बौर रच दीनी कहूं फूल राजा होवे बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगा स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मैं हरिहु रिद्ध सिद्ध करमु सब होई दुष्ट चाच वसकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल वास्ते ताहि उबारा

सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोख इनको छय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकलना तिन नर की रह, हो जो या की एक बार। चौपाई को कहे चौपाई, संबत सत्रह सहसपनी जय। अर्ध सहस पुन तीन कही जय, पाद्र सुधी अष्टमी रवारा। तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, सोईया पाए गहे जब ते तुमरे। तब ते कुआक तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद। कह हम एक न जानियो, श्री स्पान कृपा तुमरी कर। मैं न कहूँ सब तो है बकानियो। दोहरा सगल

अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

नह उपजिव कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारे ओ अस थिर मत नहीं।

0: विस्माद रूपी चमात्र निचमानागी प्रजंत विस्माद पौनिचमाद पाणिचमाद अग्नि खे दै विदाणे विषमाद अर्थिष्माद कानिष्माद तालगे प्राणे विषमाद संयोग स्माद विजोग स्माद पुख स्माद भोग विषमाद शक्ति स्माद चाला युष्माद दुजड़ युष्माद राहा विषमाद नेड़ युष्माद दूर युष्माद देखे हाजरा हजोर वेख विडाम रहा विषमाद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुख सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतिबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत

अठसठ तीरथ जे नावै उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसै रंग रोवे चुप पी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी।

0: राम भगत नह कीनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कारयोग सत्संग जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत होए। अमृत वेले तुसा सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने, उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां सरवण कीतियां, अरदास विच शामिल होए हो पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता। सतगुरु कृपा करन साडा सारिआं दा गाव्या सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन, इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़ेरीए। बेनती है गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हाल एंड साउथ हाल बन रही ने, आप संगतां वध चढ़ के हिस्सा पा रहे हो, सेवा कर रहे हो, होर भी आप संगतां दे चरणां च बेनती जिन्ना भी हो सके दसवंधी कारपेटा कढ के गुरु घर दे विच सेवा करके जरूर गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जीओ। दूसरी बेनती है 17 अक्टूबर नूं भाव आ जिहड़ा शनिवार आ रहा, इस दिन 17 अक्टूबर नूं कत्तक दी संगरांद दा दिहाड़ा आ रहा। 18 अक्टूबर नूं गुरबाणी कंठ मुकाबले जो स्टॉकटन गुरु घर विच हो रहे हैं, जिन्हां दा समां सवेरे 8 बजे तो लैके शामी 5 बजे तक है। गुरु घर दे विच 12 अक्टूबर तो लैके 18 अक्टूबर तक गुरमुख कैंप चल रहा। गुरु घर की लाइब्रेरी दे विच कैंप दा समां शामी 6 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक हुंदा। आप संगतां इहदे विच जरूर हिस्सा लो, आण के सिमरन विच जुड़ना करो जीओ। 23 अक्टूबर नूं जन्मदिन बाबा बुढ़ा साहिब जी दा आ रहा। 27 अक्टूबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब आ रहा। 3 नवंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का गुरता गद्दी दिवस, 3 नवंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा आ रहा। 8 नवंबर नूं बंदी छोड़ दिवस भाव दिवाली का दिन आ रहा। यह सारे दिहाड़े आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर दे विच बड़े सोहणे ढंग दे नाल वड्डे पद्धर ते मनाए जाणगे। आप संगतां ने जरूर सहयोग बख्शिश करना जीओ। एक होर बेनती है, युवा सिटी जो नगर कीर्तन हुंदा उहदे वास्ते गुरु घर वल्लों एक बस का प्रबंध किया गया है, जिहदी टिकट $20 रखी गई है। जिन्हां ने जाना है साडे कोल ऑफिस विच आण के तुसीं $20 दे के एक टिकट वाली लै सकदे हो जी। प्रबंधकों वालों सोना उपराला किया गया, जिन्होंने जाना हो जरूर साढ़े न गुरु घर दफ्तर आ संपर्क कर सकते हो जी। होर गुरु घर के प्रोग्रामों की जानकारी लैन वास्ते साढ़े गुरु घर के सकत्र साहब सरदार रजिंदर सिंह जी मंगर साहब हुणां नाल संपर्क कर सकते हो। उन्होंने फोन नंबर है 408-712-4145 से उन्हों को होर जानकारी ले सकते हो। आओ जो सरबत के भले वास्ते सहज पाठ चल रहे हैं, सत्कारयोग वीर भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके हैं, उन्होंने रसना तो सहज पाठ सरवण करिए जी। गुरु के लंगर त्यार निशक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो गुरु रहमत प्राप्त कर रहे हो, गुरु दरबार विच बैठ के घरां विच बैठ के। आओ समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 1385 तों श्री सहज पाठ अगे प्रारंभ होणगे, सवैये प्रारंभ हो रहे हैं। प्यार शताब जी ने हाजरियां भरनिया 1385 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

हरखवंत आनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जिह कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसेओ से जन्म मरण दुहते रहो सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखेओ तेह जन तृप्त अघाय जेह ठाकुर सुप्रसन्न भयो सत संगत तेह प्यार हर गुर नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार।

करियो सच सिरजियो संसार आप अपुल ना भुलो रतन नाम आपार कीम नह पवै अमुलो जिह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हू पाए हर गुरु नानक।

बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाऊ भगत हो मन ठहरावे बल्यो चिराग अंध्यार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची देह मोह पुन बंधी सठ कठोर कुचील कुज्ञानी धावत भरमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरत बिकल बड़ाओ अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हितानी बल बंच छप कर तू पावा पेखत सुनत प्रभे।

तारण तरन समरथ सबै विद कुलहा समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूरत करी चसा फल सिमरन राम नाम रसना संग लौ ओछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म

पूछत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंधप पूजन की सब सूझ परी वर्धमान हुवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

कृपा निद नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता सा

मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख, उल्टत जात विर की छारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरहो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत।

मीत सुत पाई, ताहू तेले रखी निरारी। पावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औध तन जारी। मीत सुत पाई ताहू तेले रखी निरारी। तावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औत तन जारी। कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल विदहारी। अस पंखी बिरख अस्थावर, बहु बिद जोन भ्रम्यो।

अंत की बार होत कतकारी, नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादिक शिव चंद मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मनिंदर खोजते गोरख, तरन गगन आवत गुण तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रै प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताकै दर्स समावत। तिसै त्याग आन को जाचै, मुख दंत सरसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझै समझावत। माया रंग बिरंग करत मोह, माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह, कै कूप गुबार पर्यो है। इता गब आकाश न मावत, बिष्टा अस्त कृम उदर भर्यो है। दह दिस ताई महा बिखिया कौ, पार धन छीन अज्ञान हरिओ है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन दंड मृत मर्यो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरह से नानक, कर कृपा संताप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरण होई आस हमारी। औकद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिनस जाहि हर नाम उचारी। इसनान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रभ धारी। साजन मीत सखा हर बंधप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है।

विदे मन दर्श मग तावक जर्यो न जात रहो जन तूर लग नीर न साक्ष बोर चले हर पंथ पग।

पापी बिचरह अनेक शास्त्र बहु खटुआ पसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंदह बहु जटुआ बिन हर भजन सगल

अनिक पात थाटे कर थटुआ सुबये महल्ले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तात चरण ले हृदय बसावों तो परम गुरु नानक गुण गावों गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गाव है गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गाव है इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज योग जिन मानियो

साधु साधु सिद्धादिक मुन जन गावे अचल चला गावे गुण धूम अटल मंडल वै भगत भाई रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जुग जिन मानियो गावे कपिलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावे जम दगन परसरामेश्वर।

राज जोग जिन मान्यो गावै गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा गावै गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक।

श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुग है लग धन धन गुर धन जन्म सक्यत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कवजन कल वखाने हर नाम रसक नानक गुर राज जुग तै माण्यो सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर किसन मुरार कंस किरतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे सहजात्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परखियत गुण रवे गौतम रिक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावे पयाल भगत नागाद पयंगम महादेव गुण रवै

ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सुवारियो ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो मां धाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो गुण गावै बल राओ सप्त पाताल बसन पाओ परथर गुण उच्चरै सदा गुर संग रहंताओ दूरबा परूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर घट घट सहज समायो सवैये महले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ता धरियो मस्तक हथ सहज अम्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोहयो अगाज मार्यो कंटक काल करज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेल है समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत कर गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुक

लहना जगत कर गुर पर सुमुरार तै तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास पिथार साधिक

सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे गुरु कै अठसठ मज्जन होए। सच तीरथ सच इसनान हर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायु गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवान अमै दृष्ट शुभ करै हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध यार लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खूवै गुर नव नित दरियाओ जन्म हम काल कतुवै सुखा हुटल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सुवैये महल्ले तीजे के एको अंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमरहु सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जेन स्रव सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीरत जन अमरदास बस्तीरिया कीरत रव किरण प्रकट संसार है साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

शिव सनकाद समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भव जल तरिया ऊधो अक्रूर त्रिलोचन नामा ऊधो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विक हरिया सोई नाम अचल भगत है भव तारण अमरदास गुरु कौ फुरिया तित नाम लाग तेतीस त्यावह जति तपी सर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगेव पितामह चरण चित अमृत रसिया।

क्या लीजै क्या तजिए बौरे ज्योतिष है सोशार जिस विख्या को तुम्हें अपनी कर जानो साछाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल ओद फुन घट है बूझ न सकै गुवार सो किछ करे जी साथ न चालै हे साकत कायाचार संत जना कै संग मिल बौरे तो पावै मुख द्वार बिन सत्संग सुख किने न पाया जय पूछो वेद विचार राणा राव सब है कौ चालै झूठ जाहे पसा राणा राव सब है कौ चालै झूठ छूट जाहे पसा।

काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो जगरत पाप रहाव। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसन आप, खिन मैं छोड़ जाए बिख्या रस तौला गए पछताप। जो तुमरे प्रभु ते स्वामी हर तिन के जापो जाप, उपदेश करत नानक जन तुम को जो सुनो तो जाए संताप। सारग महला चौथा घर पंजवां दुप दे पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जाप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाव। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन न जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी, तू आपे ही जाने अपनी भां अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते, ते हर जन के जन साधु हर पगात। ते हर के जन हर स्यो रल मिले, जैसे जन नानक सलल सलल मिलात। सारंग महला पंचौथा जप मन नर हरे नर हर स्वामी हर सगल देव देव देवा, श्री राम राम नाम हर प्रीतम मोरा रहाओ। जित गृह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते, तित गृह वाचे पंच सबत वड भाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए सब दोग गए सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु हर जन के जन साधु, जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु। हर के जन साधु हर राम बोल हर राम बोल, सब पाप गवाधु। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा। मन इच्छे फल पावो सब फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा। सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो, प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हनता सब सुखन को दाता। हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ, हर कटे कट बसता हर जल थले हर बसता, हर थान सुनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धोवा पाओ, हर जान को हर मिलिया हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया मेरे मन तन आनंद पाए मैं देखिया हर राव। जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई मैं आन दिनो साध साध सदा हर जपिया हर नाओ। सारंग महला चौथा जाप मन निरपो सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी संभव। मेरे मन अनदिनो त्याय निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को कोट कोट तेतीस, सिद्ध यति जोगी तट ताट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम, भगत भले जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी तिनकी नानक हर पैज सवारी। सारंग महला चौथा पड़ताल जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, सब सिष्ट का प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाव। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले जिस सत गुरु, सो जन हर हर अमृत नाम चुखासी। जो जन सेवा सदा सदा मेरा हर हरे, तिनका सब दुख भूख भरम पौ जासी। जन नानक नाम लय तां जीवै ज्यो चातर जल पिए तृप्तासी। सारंग महला चौथा
जाप मन श्री राम राम रंत राम सत सत राम बोल।

आप आप सबत जगे, जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम, राम राय सो जान राम नाम लेव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, सो भगत जना की पत राख है विच काल जोग अगे। जन नानक अंग किया मेरा राम राय, दुश्मन दुख गए सब पगे। सारंग महला पंजवां, चुप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त को बल जाओ, अंतर प्यास यात्रिक जो जल की सफल दर्शन कद पाओ। रहा अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक, भक्त वचन हर नाओ। जाको कोई न रखे प्राणी, ते सुंदे असराओ। नी तरिया तार निगतिया गात, नि थाम्या तू थाओ। दै दिस जाओ तहां तू संगे, दै दिस जाओ तहां तू संगे, तेरी तीर्थ कर्म कमाओ। एक से लाख लाख ते का तेरी गत में कह न सकाओ। तू बेअंत तेरी मितनी पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यो गोष्ट, हर साधन स्यो लिव लाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवा, हार जी अंतर जमी जान, करत बुराई मनुख ते छुपाई। साखी भूत पवान, रहाओ बैसनो नाम करत खट करमा। अंतर लोभ जूठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। कर है सोम पाग हिरा पर दरबाय, अंतर झूठ गुमान। शास्त्र वेद की वेद नहीं जाना, व्यापे मन कै मान। संध्या काल कर है समर्था, जो सफरी दम खान। प्रभु पुलाए उजड़ पाए, ने फल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया, जिस करी कृपा भगवान। यून सतगुर से परम पद पाया, उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथा है किछ कथ नहीं जाना, प्रभु पावै तिवै बोलान। साध संगत की धूर एक मांगो, जन नानक पर्यो सरान। सारंग महला पंजवा, अब मोरो नाचनो रहो, लाल रंगीला सजे पायो सतगुर बचन लहो। रहाओ कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन गृह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। जो कन को कोठारी चढ़ियो, कवरो होत फिरो। जाते सुध पै है बारे, तब से थान फिर थिरो। जो दिन रहन तौलो, बजो मूर्त करी पलो। बजावन हारो ऊट पूट सिधार्यो, तब फिर बाज न पयो। जैसे कुंभ उदक पूरा न्यो, तब भिन्न दृष्टो। कौ नान कुंभ जल में डार्यो, अंब है अंब मिलो। सारंग महला पंजवां, आप पूछे क्या कहा, लेनो नाम अमृत रसनी को। बावर बिख स्यो गहरहा, रहाओ दुलभ जन्म चृंकार पायो। जातो कौडी बदलहा, का थूरी को गाह क्यायो। लाद्यो कालर बिरख जेवहा, आयो लाभ लाभन कहताई। मोहन टगौरी स्यो उलझ पहा, काच बादर लाल खोई है फिर अवसर कदलहा। सगल प्राध एक गुण नाही, ठाकुर छोड़ दास भजहा। आई मसल जड़ बत्ती न्याई, ज्यो तस्कर दुर ज्यो तस्कर दर सानहा। आन पावन कोई सूज हरदास, असर नहीं पर रहा। कौन अनता भी मन छुटी है, जो सगले अवगन मेट तरहा। सारंग महला पंजवा, माई धीर रही प्रे बहुत सिबिराग्यो। नेक भांत अनूप रंग रे, तिन सुरुचन लाग्यो। रहा निस्बास रुपरे प्रे मुकटे रहो, नींद पलक नहीं जाग्यो। हार कजर बस्तर अनेक सिगार रे, बिन हा बिन फिर सब बिख लाग्यो। पूछो पूछो दीन भांत कर, को कह प्रे देसांग्यो। हियो हियो सब मंतन अर्पो, सीस चरण पर राख्यो। चरण बंदना मोड़क दासरो, द्यो साध संगत अरदाग्यो। करो कृपा मोय प्रभु मिलावो, निमक दर्स पेखा गयो। दृष्ट भई तपी तरायो, मेरा मन अन दिन शीतला गयो। कहो नानक रस मंगल गाए, शब्द नाद बाजो। सारंग महला पंजवा, माई सत सत सत हर सत सत सत सदा। बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं छी गांठरी बदार। निस्बासुर नखेत्र बिना सिर, अब सियर बिना दा। गिर बसुदा जल पवन जाए, गो एक साध बचन अटला दा।
अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पत्त बिनादा चार बिना दीखट बिनासी एक साध बचन ने चलादा राज बिनासी ताम बिनासी साधक की बेनादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखाता पायो न जाई कहीं पांतरे प्रभु नानक गुर मेला दा सारंग महला पंजवा मेरा मन बास भो गुर गोविंद जहां से मन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बिसरे ठाकुर प्यारो तहां दुख सब आपत जय गुण गाय आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहाँ श्रवण हर कथा न सुनिए तय महाप्रयान उद्यानंद जहाँ कीर्तन साध संगत रस तय सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बिरख बरख जीव सगली औद बिरथानंद एक निमको बिंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रपाव दिस साध संगत कृपान दो नानक पूरा हो है सर्व में सर्व गुणा गुणा बेद जान दो सर्ग महला पंजवा आप मोहराम भरोसो पाए जो जो सरन परयो करुणा नित्य ते पवै तराय रहा सुख सोयो और सह समायो सह साध गुर है गवाय जो चाह सोई हर की हो मन बांछत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकुर कहे रसनार गुण गाए देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल मोल नाम हर छोड़ न कथाओ जाए कवन उपमा कौन मडाई क्या गुण कहोरी जाए हो कृपाल दया दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए सर्ग महला पंजवा ओए सुख का स्यो वर्ण सुनावत नंद विनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहा विषम पई पेख विषमादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम मूलक जो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राख्यो भूजना आवत जावत जा को हृदय प्रगास पयो हर उआ की कही न जाए कहावत आन पाव जेते कछ कहिये तेते सीखे पावत चिंत लाल गृह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे प्रखावत निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुलो तुल्यो न जावत कौ नानक जर जन जरिया तिस ही कौ बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रहने बिही गुदार है गोविंद न भजे हम बुद्ध माता जन्म जो है जो हार है रहाओ नाम मोला प्रीत न तिस्यो पर निंदा हितकार है चापर भांस सवार तृण को द्वार पावक जा रहा है कालर पोट उठाव मुंडा है अमृत मन ते डार है उड बस्त्र काजर में परया बौर बौर फिर जा रहा है काटा पेड़ डाल पर ठाडो खाए खाए मुस्कार है गिरियो जाय रसा तल परियो छिटी छिटी सिर पार है निर्वैर संग वैर चाहे पहुँच न सक गुवार है कौन आन संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब फूले प्रमत न जानिया एक सुधा कर जाकर हृदय वसिया तिन बेदन तिन बेद है तत् पछानिया रहा पर व्यर्थ मार्ग जेता किच हो तेता लोग पचारा जलो हृदय नहीं प्रगासा तलो आंधा अंधारा जैसे धरती साध है बहुविद बिन भी जय नहीं जम है राम नाम बिन मुक्त न होई है टूटै नाही अब मन है निर्बलो है अत श्रम पावे नैनू कैसे रिस बिन गुर पेटे मुक्त न काहू मृत नहीं जगदीश है खोजत खोजते है बिचार्यो सर्व सुखार नामा कौ नानक तिस भयो प्रावत जाकर लेख मथामा सारंग महला पंजवा अंद राम के गुण कहिय सगल बतार सर्व सुख सिद्ध मन बांछित फल लई है रहा आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभु अविनाशी नाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो कटवासी गावत सुन सुनावत सरदा रस पी बड़ पागे कल कलेश मिटे सप्तान ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ ताज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू सम्राट पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो प्रा सर्व मैं ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरुदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहा
दुख रोग पै सगल मिनासे जो आवै हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै बड़ समरथ तारण तरण जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे को सुबर परण हर दासन की आज्ञा मानते नाही पुन गर्व परण भगतन की टहलक मावत गाव दुख काटे ताके जन्म मरण जाको भयो कृपाल बिठला तिन हर हर अजर जरन हर हर रस है अगाने सहस माने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुण निंद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रि जायो रहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भक्त दर्श देख नैन रंगा लोभ मोह सूटे भ्रम संगा कहो नानक सत सहज आनंदा खोल भीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा घर दू

श्री प्रीत मनोहर मन न रहे बो भेद उमकाई रहाव। चित मन चित वप्रे प्रीत मरागी कद पाव हर दर्शाई। जन करो यह मन नहीं तीरे कौ है रे संत मिलाई। जाप तप संयम पुन सब होम ते सर्प सब सुख जाई। एक निमक प्रे दर्श दिखावे ते संतन कह बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मानव मान हो सकल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल मोह गृह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारिंग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक घोर मैं उर्द तब करता निमक निमक गुण गाही रहाओ। अनेक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुल पाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तब लागो अनठाही। करै बुराई ठगाई दिन रायन नेह फल कर्म कमाही। कान नाही गुण गाहन लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संकूल लपटायो उर्ज परयो कुसमाही। धर्म राय जप क्रस बवरे तौ काल मुखा उठ जाही। सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस लेख लिखाही। कौ नानक तिन जन बलिहारी सो लिप रहे मा सो अलिप रहे मन माही। सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिछड़ धोर मृतका गृह में रह न पाई रहाओ। जी अही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो धूर बांछाई। जय प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ता कहो जाई। सारंग महला पंजवा उआ अवसर कहो बल जाई। आठ पैर अपना प्रभ सिमरन वड़पागी हर पाई रहाओ। पलोक वीर दास दासन को उत्तम जैन उत्तम सैन जन नाई। ऊचते ऊच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकुर बण आई। जियो पिंड तन धन साधन का हे मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुर आप। सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पैर मेरे मन जाप। रहाओ अमृत नाम स्वामी तो तेरा जो पीवे ते सही तृप्तास। जन्म जन्म के किल बिखनासा आगे दर गए हो खलास। शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश। कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तंदरस प्यास। सारंग महला पंजवा कर तीजा

एक सबिर नाही को दूजा आन बियो लवै लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संग के भय पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जन से गोष्ट से तरे बूढ़त घोर अंधकूप मैं ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े है पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याए एक पलक सुख साध समागम कोट वैकुंठ पाए रहा दुलभ दे जप होत पुनीता जम की त्रास निवारय महापद के पाते कुतरय हर नामा और उतारय जो जो सुन राम जस निर्मलता का जन्म मरण दुख नासा कहु नानक पाई है वड भागी मन तन होए बिगासा सारंग महला पंजवा दुप दे घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन घर आवो करो जो दरिया मान करो बमान बोलो भूल चूक तेरी प्रेचिरिया रहा निकट सुनो अर पेखो नारी निकट सुनो अर पेखो नाही भ्रम भ्रम दुख भरिया होए कृपाल गुरु लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख भरिया सा संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मेरिया सारंग महला पंजवा आप क्या सोचो सोच बिसारी करनी सा सोई कर रहा देव नाम बेलहारी रहाओ चौदह स्फूल रही बिख्या बिख गुर मंत्र मुख गरुड़ारी हा दे राख्यो करके अपना जोक जल कमला अल पारी हो ना ही किछ मैं क्या हो सा सब तुम ही कर धारी नानक भाग परयो हर पाछै राख संतन सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोह सर्व पाप बरी बिरकाते करण कारण सम्राट स्वामी हर एक हस्ते मेरी गाते रहा देखे नान रूप बौरंगायन नाही तुम भांते देह आधार सर्व को ठाकर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो पर्यो त्यो गुर मेर चरण पराते कौ नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा आब मोहे लभ दियो है हर टेका गुरदयाल भय सुखदाई उंदला मानक देखा रहा काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास विवेका ज्यों जल तरंग फेम जल हुई है सेवक ठाकुर भय का जय ते उठ्यो तही आयो सब ही एक एका नानक दृष्टायो सर्वठाई प्राणपति हर निमका प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रेम मांगे पीखायो सर्वथान देश प्रेरोम न संसर लागै रहाव मैं निरे अनेक भोजन बहु बिंजन तिन सो दृष्ण करै रुचंग हर रस चाहे प्रे प्रे मुख टेरे ज्यो अल कमला लो भांगै गुण निदान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रपाए पठायो मिलो सखागल लागै सारंग महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया पय है छे दियो दुष्ट बिगाना रहाओ तुम्हें सुंदर तुम्हें स्याने तुम्हें सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख न कीमत जाना तुम्हें नायक तुम्हें छत्रपा तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सत कुरबाना सारंग महला पंजवा मेरा मन चीताए प्रेरंगा बिसर तंद बंद माया कर जन सवाई जंगा रहा हर सेओ हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रे अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग निसंगा निरपो पय नानक पो मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवणों पूरे देहा प्रे अंक समानी रहा छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगर सुजानी जे कर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो।

कह बसायो भगत बचल जिंड राखी आन संतानी कहो नान घर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सारंग महला पंजवा आप मेरो पंचा ते संग तूटा दर्शन देख भय आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत हरिया नेक राख सुरूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानाथ पै लूटा बहुत खजाना मेरे पाले परिया अमोल लाख या कूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकुर स्यो मन लीना प्राण दान गुरपुरे दिया उर जायो जल जो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर हे अर्थ सगल दान कीना मंत दड़ाए हरे औखद गुर दियो तो मिलियो सगल पर बीना गृह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो कोई प्रभ दीना को नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन साहब जी तेरे तू तार छूट है संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार रहा करह अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समार हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए भूपत बपरे कही कहो ए किस नो मार राख राख राख सुखदाते सब नानक जग तुम्हार सारंग महला पंजवा अब मोहे धन पायो हर नामा पय चिंत सन सब बुझी है लिखियो लेख मतामा रहा खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा है जोरियो हाथ चरियो ला लिया गामा आन बापार बन जो करियो ते दुख सहामा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरे मन मेष लगे प्रे बोला गुरबाह पगर प्रभ सेवा लाए सा दयाल हर टोला राव प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रत पालक मोहलतर सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं उला जे तक तपसा लै तो दास तुम्हारे घास वडावै के तक बोला जन नानके पर प्रभ पुरख विधाते मेरे ठाकुर गह तोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निम को पाय समाव देख चरित मन मोहं रहाव जिस सुनिया मन होए रहस्या हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बण आई प्रभ तोहं केल विख गए मन निर्मल होई है गुर काडे माया द्रोहं कौ नानक मैं सो प्रपाया करण कार समरथोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखियो चल तमासा सब हो दूर सब हो तेने रह गम गम घट वासा रहाओ पूल न पूल लिख न चलावे मता न करे पचासा खिन मैं साज सवार बिना है भगत वचल गुणता सा अंध कूप मैं दीपक बल्यो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सा पूर्ण होई आसा सारंग महला पंजवा चरण गोविंद मार्ग सुहावा यान मार्ग जत जेता किच ताई ते तो ही दुख हावा राव ने तपनीत भय दर्श पेखे हस पुनीत टहलावा रिदा पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत तुरावा सर्व निदान नाम हर हर कह जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जय मात पिता सुत भाई न पहुंचे तहा तहा तू रखा रहाओ अंध कूप गरे मह तिन सिमर्यो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गर मुक्त गोर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्त्याया घाय रसन चखा कौ नानक सुख सहज मैं पाया गुरलाही सगल तिखा सारंग महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभुति आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे न ताती बाया रहा जे ते सा समले ते ही गुण गाया निमखना बिछरा करी ना बिसरा संग

सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजमा मेरे मन संत लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म भयो परगासा घट घट हर हर डीठा रहाओ। पार ब्रह्म अजूनी संभो सर्वतान घट मीठा, भयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्राप चरणीठा। सतसंगत सतसंगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा, कौ नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लह मजीठा। सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे, निमक बचन प्रभ हीर बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रहाओ। कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे, एक आस मोहि तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे। नयन तृप्ता से देख दर्शावा, गुर कर तरे मेरे माथे, कौ नानक मैं अतुल सुख पाया जन मरण पय लाथे। सारंग महला पंजवा रे मुड़े आन काहे कत जाई, संग मनोहर अमत है रे फूल फूल बिख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप विधाते ते सिओ रुच नहीं राई, मोहन सिओ मां बा मोहन सिओ बाबर मन मोयो, झूठ गौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुखता संतन सिओ बने आई। सगल निदान करे मैं पाए, कौ नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा ओं प्रीत प्रीत चीत पहलरिया, जो तो वचन दियो मेरे सतगुर तो मैं बाम तो मैं साज सिगरिया रहाओ। हम भूलें तुम सदाया भूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैला घर लाज संग संग बसरिया। तुम गभीर तीर उपकारी, हम क्या बपुरे जंतरिया, गुर कृपाल नानक हर मिल्यो तो मेरी सुख से जरिया। सारंग महला पंजवा मानो ए दिन स्थान परवाना सकते, सगलते करी संयोग सुहाव ऐसा गुरसंगिया न रहा। तन सुभाग तन सुहागा तन देत जनमाना, ए तन तुम राग सब गृह तन तुम राहियो क्यों कुर्बाना। कूट लाख राज सुख पाए निमक देख दृष्टाना, जो कहो मुखो सेवक बैसिए सुख नानक अंत न जाना। सारंग महला पंजवा अब मोरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े सतगुर शरण पया रहा। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे, रोग सगल ही खया, कोट अपराध खिन मैं खो पई है गुर मिल हर हर कहया। पंचदास गुर वसन कीने मन ने चल निरपया, आए न जावे न कत ही डोलाए फिर नानक राजया। सारंग महला पंजवा प्रभ मेरोए तुत सदा सहाय, मन मोहन मेरे जी को प्यारे कहा कवन कवन कहा गुन गाई रहा। खेल खिलाए लाड लडावे सदा सदा अंडाई, प्रतपालय बारे की न्याई जैसे मात पिताई। तिस बिनिंग नहीं रह सकिए बिसर न कब हो जाई, कौ नान मेर संत संगते मगन पय लिबलाई। सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाय, आसना अबर काहू की जय सुखदाता प्रत्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे करते सही सरणी पाइय, तिसे त्याग मानुक जो सेव तो लाज लोन हो जाइय। ई कोट पकड़ी ठाकुर की गुरमिल मत बुद्ध पाइय, गुण निधान नानक प्रमिलया सगल चुकी मोहताइय। सारंग महला पंजवा ओट साणी प्रभ जियो मेरा, दृष्ण लियावो अवर काहू कहो मान महत प्रभ तेरा रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख घेरा, अमृत नाम औखद मुख दीनो जाय पया गुर पैरा। कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरा, काट सिलक जो अपनो कीनो नानक सूख नेरा। सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बिनासी, पयो कृपाल जी सुखदाता हुई सगल खलासी। रहाओ अवर न को सूजय प्रभिन, कहो को किस पै जासी, ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सबके तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन बिनासी, कहो नानक मन अनंत पया है काटी जमकी फासी। सारंग महला पंजवा मेरो मन जात का तुझे समारा है, हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे जो जान है त्यो पार रहाओ। जो भूखो ता भोजन मांगे अकाए सुख सिगारे,
तब अरोग जब तुम संग बसो छुटकत होए गुबार। कवा न बसे रुदास दासन को थाप्यो थापन हार। नाम न बिसरे तब जीवन पाय बिनती नानक सार। सारंग महला पंजवा मानते भय पौ दूर परायो। लाल दयाल गुरु गुलाल लाडिले सहज सहज गुण गायो रहाओ। गौर बचनाथ कुमार कृपा ते बौर न कतौ तायो। रहत उपाध समाध सुख आसन भक्त वचल गृह पायो। नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो। करना आप करावन आपे कहो नानक आप या पायो। सारंग महला पंजवा अमृत नाम मनाया धारो जिंदी आतिस्क कुर्बान गुरपुर नमस्कारो रहा। बूझी तृष्णा सह सुहेला काम क्रोध बिख जारो। आय न जाय बस है ठार जय आसन निरंकार। एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंदुकारो। याद माध्य अंत प्रभ सोई कहो नानक साज बिचारो। सारंग महला पंजवा प्राबिन रह न जाय करी सर्व सुख ताहू कह पूर्ण जा कह सुख हरी रहा। मंगल रूप प्राण जीवन धन सिमरत अनद कना वड सिमरत सदा सत्संगे गुण रसना कमन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन करन हारे कौ नानक ते पमन पवित्रा जा मैं संत तुम्हारे। सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही मात गर तुम ही प्रतपालक अमृत मंडल एक तू ही रहा। तुम है पिता तुम ही पुन माता तुम है मित तुम है मीत हित प्राता तुम परिवार तुम है आधारा तुम है जी प्राणदाता। तुम है खजीना तुम है जरीना तुम है मान कलाला तुम है पार जात गुरते पाए तो नानक पय निहाला। सारंग महला पंजवा जाहू काहू अपनो ही चित्यावै जो काहू को चेरे चेरो होवत ठाकुर ही पह जावै रहा। अपने पै दुख अपने पै सुखा अपने ही पै बिरथा अपने पै मान अपने पै ताना अपने ही पै अर्था। के नहीं राजोवन तन मिलका के नहीं बाप मह तारी सर्व थोग नान गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रो मोह दूर कर बपरे संग गुफल जान रहाओ। मिथ्या राजोवन अरुमरे मीर मलके अरखान मिथ्या का पर सुगंध चतुराई मिथ्या पूजन पान। दीन बंदरो दास दासरो संत की सरान मांगन मांगो होए चिंता मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जवान जंजारी रहा। दिवस चार के दिस है संगी उहां नाही जय पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नाही गवारी। हो नाही नाही किछ मेरा ना हमरो बस जारी करन करावन नानके प्रभ संतन संग उधारी। सारंग महला पंजवा मोहनी मोहत रह न होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी तूट न काहू तोरी रहा। खाट शास्त्र विचरित रस नागर तीर्थ गमन न थोरी पूजा चक्र व्रत नियम तपिया उहा गैल न छोरी। अंध को मैं पद तो होत जग संतो करो परम गत मोरी। साध संगत नानक भयो मुक्ता दर्शन पेगत पूरी। सारंग महला पंजवा कहा करे रे खाट खाटुली पमना पार तोर चमरो अत जजरी तेरू रे तेरी रे माटुली रहाव। उही ते हरिया उही ले तरियो जैसे बासा मास ले ते चाटुली देवन हार बिसारे ओंदले जो सफरी उधर पह बह हाटुली। साध बिकार बिकार झूठ रस जह जानो तय पीर बाटुली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुला तेरी गांठुली। सारंग महला पंजवा गुर जियो संग तुहारे जान्यो कोट जोध उवा की बात न पूछिए तांदर गह पी मान्यो रहाओ। कमन मूल प्राणी का कहिए कमन रूप दृष्टान्यो जोत प्रगास पई माटी संग दुलब दे बखान्यो। तुम ते सेव तुम ते जप तापा तुम ते तत पछान्यो कर मस्तक धर कई कट्टी जेवरी नानक दास दसान्यो। सारंग महला पंजवा
हर हर दियो सेवको नाम मानस का को बपरो पाई जाको राखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचाय आप सेवक के काम आपे सगले दूत विदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत्रा की सेवकी आपकी ओ बंधान आजुगा सेवकी राख नानको प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सकार प्राण मन तन जियो पिंड सम तुम राय तन सीतो तुम रहतान रहा तुम ही दिए अनेक प्रकार तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पत राखो अंतर जामी जान जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते जिन संतन जानिया तू ठाकुर तू ते आए परवान जन का संग पाइय वड भागी नानक संतन कै कुर्बान सारंग महला पंजवा करहोगा दयाल संतो मोरी तुम सिमरत कारण करना तूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिखई तुम तारे स्मत संग तुम्हारा पाई अनेक जोन प्रमते प्रभ बिसरत सा सहर गाई जो जो संग मिले साधु के ते ते पतत पुनीता कौ नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्व सुख आनंद सहज रस सुन तुहारो नायो रहा कृपा निदान सुख के सागर सब जस में जाको छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो नैनो संग संतन की सेवा चरण चारी के सायो आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक के पायो सारंग महला पंजवा जाकी राम नाम ने लागी सजन श्रीदास सुहेला सहजे सुखी है बड़भागी रहा रहत बिकार अलप माया ते हम बुद्ध बिख त्यागी दर्श प्यास आस एक की टेक ही है प्रेपागी अचिंत सोए जाकन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठह कहो नानक जिन जगत ठिकाना सो माया हर जन ठागी विसारंग महला पंजवा आप जन ऊपर को न पुकारे पुकारन को जो उत्तम करता गुर परमेश्वर था को मार रहा निर्वैर संग वैर चावै हर दर गयो हारे आजुगात प्रभ की बढ़ियाई जन की पै सुवार निरपव पै सगल पव मिटिया चरण कमल आधार है गुर का बचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप जो जानो त्यो राखो रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सतर पेख समत विचार्यो सगल संभाखन जाप तपत बुझी शीतल अघाने सुन अनहद बसम पय बिस्माद अनद पया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरा गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर के जाइए बलिहारी सदा सदा होवारिया रहाओ गुर का नाम जप्यो दिन राती गुर के चरण मन तारिया गुर की धूर करो नित मज्जन किलविख पै किलविख मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा गुर अपना नमस्कार सर फला दीने गुर पूरे नानक गुर निस्तारिया सारंग महला पंजवा सिमरत नाम प्राण गत पावे मिटह कलेस त्रा सब नासै साध संग हित लावै रहाव हर हर हर हर मन राधे रसना हर जस गावै तज मान काम क्रोध निंदा बास देव रंग लावै दामोदर दयाल अराधो गोविंद करत सुहावै कौ नान सब की होय रे ना हर हर दर्श समावै सारंग महला पंजवा अपने गुरपुर है बलिहार है प्रगट प्रताप की ओ नाम को राख रखनहार है प्रगट प्रताप की ओ नाम को राखे रखनहार है रहाव निर्भव किए सेवक दास अपने सगले दुख बिदारा है अनेकों पाप त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारा है।

हाव समझा चेत चेत मन मेरे कथी संतनया कथ कहानी लाभ लहो हर हृदय राधो छुटकै आवण जानी उदम सख सियाण तुमरी देह तनाम वखाणी सही भगत भगत से लागे नानक जो प्रपाणी सारंग महला पंजवा धनवंत नाम के बनजारे सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे रहाव छोडो कपट होए निर्वय रासो प्रभ संग निहारे सच धन मन जो सच धन संचो कबो ना वहारे खात खर्चित किज निकुटत ना यगंत परे पंडारे कहो नानक सोबा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा राब जी मोहे कमना नाथ बिचारा कमन मूल ते मानो करया है प्रताप तुहारा रहाओ जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए अपारा सबके प्रीतम सर्व प्रतिपालक सर्व कटाया धारा कोई न जाने तुमरी गत मित आप एक पसारा साधना बैठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवै राम शरण वडभागी एक बिन कछ होर न जाने अवर उपाव त्यागी राव मन बच क्रम अराधय हर हर साध संग सुख पाया अनंद विनोद कथ कथा रस सच सह सुमाया कर कृपा जो अपना किनो ताकी उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरिय जो राते प्रभ निर्माणी सारंग महला पंजवा जाते साधु शरण गही सांत सहज मन भयो प्रगासा पिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देव अपना बिनती ये कहे कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जयते उपजो तही समानो साई बस यही कौ नानक ब्रह्म गुरु खोयो ज्योति जोत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले पलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यो लिवलाओ साध संगत होए निर्मल बहुत जोन नयाओ जियो प्राण आधार तेरा तू न छावे थाओ सा सा समाल हर हर नानक सदबल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोबिंद चरण त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रमणी मया करो भगवान आवत जा दो पक पूर्ण पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कौ नानक राम नाम बिन अवर सगल बिद पूरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख ना सह चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जाने चल हर का नाओ भगत भावनी पार ब्रह्म की अवनासी गुण गाओ अगाम गोचर मितनी अगाम गोचर मितनी पाइये सगल कटाया धार नानक वाहो वाहो कहो ता कहो जाका अंत न पार सारे महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहे ठाकुर सब थाई निकट बसे प्रभ ने रह रहा बंधन तो राम ले लाई संत संग बने आई जन पदार्थ भयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावै आठ पैर गोविंद गुण गावै जन नानक सद बल जावै सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिय हर पेखा करो कृपा प्रीतम मन मोहन फोर भरम की रेखा रहाओ कहत संत के सांत न उपजत उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्याग ज्ञान जो चाहत ताकै मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन मान तपेखा नानक दर्श मगन मन मोयो पूर्ण अर्थ विसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम काल मल दग्ध होए खिन पीतर कोट दान स्नान राव आन जंजार विरथा संकालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जो तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम प्रस पागै रहा
बाल बंच करे न जाने लाभ सो धूर्त नहीं मूड़ा स्वार्थ याग सार्थ रचियो न सिमरह प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंड सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन राव संचन राम नाम तन रत्न मन तन पीतर सीवन हर रंग रंग भय मन लाला राम नाम रस कीवन जमीना जल स्योर जानो राम नाम संग लीवन नानक चंद संत चात्र की न्यायी हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन ते सा सब बंधन जंजाल राव बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटै काल जब जम आए सिंघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लेहे दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीते पोहत न संसार रहा श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी है साध को आचार चरण कमल स्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निधान उचरत नेत्र सना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाय श्री धर ठाकुर मिलते अंध दुख कोरी रहाओ हर के नाम से प्रीत न लागी अनेक भीख बोजोरी टूटत बार न लागे ताको जोगा गुर जल जोगा गुर जल पूरी कर कृपा भगत रस दीन मन खचत प्रेम रस कोरी नानक दास तेरी शरणाई प्रभ आन न होरी सारंग महला पंजवा चितवा वा अवसर मन माहे होय कितर मिलाओ संत साजन गुण गोविंद नित गाए रहा बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मिठो तिस बिंदु सर नाहे जब तब संयम कर्म सुख साधन तुलना कछुआ लाहे चरण कमल नानक मन बेद्यो चरण संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्राप संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरा गुण गोपाल हर राया बिसरण जाई निमक हृदय तय पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाकै एका लिव पूर्ण परमेश्वर पवनि नानक ताकै सारंग महला पंजवा जाकै राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्णता होके दुख न व्यापै कोई रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उदम करो दर्शन पेखन को कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट में हारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए सारंग महला पंजवा।

मान तन धन सब तुमरा स्वामी अन्न दूजी जाए जा तू रखत भी रहना तुमरा पन खाए साध संगत कै बल बल जाई बौ न जन्मा ताए नानक दा तेरी शरण आई जो पावे तिवै चला।

प्रभ की उपमा जात न कही, तज आन शरण गही रहो, प्रभ चरण कमल आपार हो जाओ सद बरिहार। मन प्रीत लागी ताहे तज आन कथे न जाहे, हर नाम रसना कहण मल पाप कल मल दहण, चढ़नाव संत ओधार पै तरे सागर पार। मन डोर प्रीत प्रीत मन डोर प्रेम प्रीत, संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रपेखिए बिस्माद चख अनंद पूरण साद, नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत। तह नहा नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जब न पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल प्रभ भक्त वस दयाल, हर निगम लय न पेव नित करे मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जहां की महा बिखड़ी कार, तहां की कीमत न जाने कोई, जब थल मैयर सोए

पांजवा प्रभ च जन्म मरण निवार हर परे उदवार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर अंग कर दया लिहो लड़ लाए नानका नाम ते आए दीना।